चार बज चुके हैं और लीजिए सुनिए एफएम रेडियो समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लापता। बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। डॉ. जयशंकर ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

0: ने कल सन लाइफ फाइनेंशियल और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड समेत कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। कर्नाटक सरकार ने विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने और शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विश्व का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कंटेनर बंदरगाह बनकर उभरा है। इस बंदरगाह ने इस वर्ष की पहली छमाही में कंटेनर परिवहन में 13.6% की वृद्धि दर्ज की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की। और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम में बहुत खास संदेश टू सोल्जर्स।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. इस शो में आज आपके साथ हूँ मैं, शैली भाषांजलि. अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज, जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं. लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ, सूत्रधार हूँ. 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है. जो भी आप महसूस करते हैं जरूर लिखिएगा. युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ाई दिखे देते, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है. कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है. और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहाँ से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं.

संदेश टू सोल्जर्स जिस कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक

पर एक सजग एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में. मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं. अब जो पूरा देश, जो जो बहनें हैं, अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं. किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की

वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है। आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ. शांताचारा बाडिगर को कोनूर कोकानूरू कोकानूर एम आई राइट? ओके, भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा. शब्दों पे क्षमा चाहूंगी, लेकिन दावानागरी से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है. आप जुड़े

हैं शो के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरूला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टियस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स, और सल्यूट करते हैं उनको. यशवंत जी लिखते हैं अपने अपने भाव के साथ, और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं. जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं. इसलिए आज आपकी आवाज उन तक पहुंचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है. मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं.

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। ये बहुत ही खास दिल के करीब ये कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूंगी जो भाई के लौटने का इंतजार करती है। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतजार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूंगी जिनकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं। और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर जिला, चंपावत, उत्तराखंड से। इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेस स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेज उसका यहाँ है वो आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की। और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, कि इन्होंने यश सिंध ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो, अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारा शो है। सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले। बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में, कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का, जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

0: आंखों देखा सुना रही हैं, हिंदी में महेश तिवारी और अंग्रेजी में शांतनु मिलिंद टिपनेस। आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम चलें।
1: नमस्कार, भारतीय वायुसेना और ये टूर्नामेंट जो यहाँ पर आज सुबह तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है 2026, आज ये भारत के ऐतिहासिक स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथी कॉमेंटेटर अंग्रेजी में संतनु टिपनेस, हमारे आकाशवाणी स्पोर्ट्स फैक्स प्रोड्यूसर शंतनु शाहनवाज खान और टेक्निकल टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है वो 65वें सुपर्टो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत ये मुकाबले खेले जा रहे हैं और उसकी अभी थोड़ी ही देर में उसकी शुरुआत होगी, लेकिन जहाँ तक मैच का सवाल है अभी सारे खिलाड़ी लाइनअप करते हुए बीच मैदान पर नजर आ रहे हैं और

सारे खिलाड़ी लाइनअप करते हुए नजर आ रहे हैं बीच मैदान पर, और देखने वाली बात यह होगी कि कब जाकर इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, फाइनल का मुकाबला। दर्शकों का उत्साह उमंग बहुत तेजी से यहां पर गर्भजोशी के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है, और ब्लू जर्सी और ब्लू पैंट और टी शर्ट में यहाँ पर जो टीम है वो नजर आ रही है, यहाँ पर झारखंड की टीम पैट्रिक हाई स्कूल गुमला, और जबकि येलो ड्रेस में

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद मैं सभी श्रोताओं का फिर से यहाँ पर अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार ये दोहराते हुए कि मेरे साथ अंग्रेजी के कॉमेंटेटर संतनु टिपनेस, हमारे प्रोडक्शन टीम में हमारे शाहनवाज खान जो स्पोर्ट्स मैक्स, और उनकी टेक्निकल टीम यहाँ पर पूरा सहयोग दे रही है इस प्रसारण को आप तक पहुँचाने में। तो आज का इस फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला, जिसको लेकर काफ़ी उत्साह उमंग यहाँ पर साफ नज़र आ रहा था सुबह से, झारखंड और यहाँ पर मिजोरम टीम के बीच में ये संघर्ष आज यहाँ देखने को मिलेगा, जबकि ये मुकाबला

0: खेला जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली, दिल्ली का ये ऐतिहासिक स्टेडियम जहाँ पर दिल्ली में फुटबॉल का एक प्रमुख केंद्र समझा जाता है। इससे पहले से कॉरपोरेशन स्टेडियम के नाम या दिल्ली गेट के नाम से स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इसका रखरखाव और स्वामित्व दिल्ली नगर एमसीडी के पास है। लगभग 35,000 दर्शक बैठने की क्षमता इस स्टेडियम की है। 2007 में इसका रिनोवेशन किया गया, फ्लड लाइट्स लगाई गई और कई सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिसकी वजह से आज शाम के वक्त या रात के वक्त भी यहाँ पर कई टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फुटबॉल दिल्ली जो सॉकर एसोसिएशन है उसका मुख्यालय यहाँ स्थित है। यही वो जगह है जहाँ पर नेहरू कप साल 2007 और 2009 में भारत ने इसी स्टेडियम पर जीत कर सीरिया को परास्त कर ऐतिहासिक नेहरू कप जीता था और 2008 में भारत ने एएफसी चैलेंज कप में कजाकिस्तान को हरा कर एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था। और नियमित रूप से डुरंड कप, सुब्रतो कप, एशियन ट्रॉफी और दिल्ली के कई प्रीमियर लीग यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। आई लीग और स्थानीय क्लब जैसी कई सुविधाएं यहाँ पर इस क्लब का फायदा लेते भी नजर आ रही है। इस टूर्नामेंट का आयोजन जैसे कि आप जानते हैं भारतीय वायुसेना IAF के स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तहत सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी SMSES द्वारा किया जाता है। ये 65वां ये संस्करण है और इस 65वें संस्करण में जैसे कि आप जानते हैं 18 अगस्त को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और इसके कुल मैचेस जो खेले गए नई दिल्ली NCR में अम्बेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क फुटबॉल ग्राउंड, पिंटो पार्क ग्राउंड और राजोकरी फुटबॉल ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए। बेंगलुरु में एयरफोर्स स्कूल जलाहली, एयरफोर्स स्कूल येलाहंका और सुब्रतो फुटबॉल ग्राउंड जलाहली में ये मुकाबले खेले गए। संतनु आज फाइनल का जो मुकाबला खेला जा रहा है झारखंड और मिजोरम के बीच में, क्या उम्मीदें क्या अपेक्षाएं लेकर आप सोचते हैं कि ये टीमें मैदान पे उतरी हैं?
1: एंड सो वी रीअसेंबल फॉर द 65th एडिशन सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026। Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all age group, welcome, welcome all you football fans to the historic Dr. B.R. Ambedkar Stadium. The stage is set, the lines are drawn, and the floodlights are beaming down on the historic turf of Dr. B.R. Ambedkar Stadium. It is time for the grand finale of the Junior Girls Under 17, the subdivision of the Subroto Cup International Football Tournament. NCC versus Jharkhand is the final lineup. And as we gear up to the kickoff, just moments away now from what has been a fantastic evening so far building up to the stadium. As we see Mahesh in the stands, a lot of young children from across the country motoring the way to the Ambedkar Stadium to see what a spectacle this will be. You can literally feel the sense of order, pride and history filling the air tonight, and that is exactly because this tournament carries a proud lineage of the Indian Air Force. It bears the name of Air Marshal Subrato Mukherjee, the first Indian Chief of Air Staff and the visionary leader who realized over 6 decades ago that the future of Indian football lies at the grassroots school level. When you see the precision on the pitch tonight, Mahesh, it will mirror the elite discipline of the force that organizes it. And from what I have seen so far building up to this match, I think both the teams are equally pumped up, just cannot wait for the match to start. In the yellow kits, we have NCC from Jharkhand, who have been built on a legacy of pure dominance. Springfield Higher Secondary School from Aizwal, Mizoram, storming into their first ever national final. They stand squarely in front of the dominant force in the form of St. Patrick's High School from Jharkhand, who have been 3-time winners of this subdivision category. Only Jharkhand and the school from Bangladesh in the form of Shiksha Pratishthan School have been able to win this division crown 3 times. 2022 is when it all started for Jharkhand. 2023 defended the title successfully. 2024 again marking the triple crown. Now standing fearlessly in front of them is NCC, who are there playing in the first match. Mahesh, how about the lineup today?
0: बिल्कुल, और जो टीम इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आ रही है, आपको बता दूं झारखंड के लिए जो टीम नजर आई उसमें खुशबू कुमारी गोलकीपर होंगी और ड्रेस कोड है जैसे कि स्काई ब्लू, हमने पहले आपको बताया, सबारनी कुमारी, उषा कुमारी, खुशबू टिक्का, मनीषा डूंग, बीना कुमारी, सृष्टि कुमारी।

0: और ऑन सुनीला टूटी कृति और ऑन और सोनल मुंडा, जबकि उनके रिजर्व प्लेयर हैं गौरी सिंह, अनुषा बेटी स्विट मींस अर्चना डूंग और अंचल आर ऑन, जबकि मिजोरम की टीम का सवाल है येलो ड्रेस में, येलो टी शर्ट और येलो हाफ पैंट में उनकी नजर आ रही है। हमारे खिलाड़ियों के नाम, जैसे आप जानते हैं मिजोरम के खिलाड़ियों के नाम प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो खिलाड़ी हैं पी लाल रुआतियंगी, नानसी सिमसा गपुई, वायलट लाल रुआत लुआंगी, लल्लाव झुआली, नेम किचोई हाओ किट, आयरिन नेग दीप थेल, थुवान दिनपुई, जे एच लाल लुनपुई, एसले रिमान संग किमी ओपीस सिपा, जबकि रिजर्व प्लेयर हैं मर्सी लाल प्यारी, पीसी लाल रिन हुई, मालसाव लुआन जी और लाल फांग किमी। तो ये टीमें दोनों आज एक दूसरे के साथ संघर्ष करती हुई नजर आएगी। और जैसे संतुर आप जानते हैं, जो कि सेमीफाइनल में इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जो टीमें जीती हैं, सबसे पहले तो मैं पिछले 7 संस्करण का अगर जिक्र करूं, तो उसमें 2017, 2018, 2019 में बांग्लादेश के बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान ने अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया था। 3 लगातार मैचेस जीत के 3 साल उन्होंने हैट्रिक की थी, 58, 59 और 60वां संस्करण उन्होंने जीता। उसके बाद 2024 में 22-23 में सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, जो आज फाइनल में खेलता हुआ नजर आ रहा है, 2022-2023 में 2 बार लगातार 61 और 62वां संस्करण उन्होंने जीता। और 2024 में होम फील्ड हाई स्कूल हैदराबाद, जिन्होंने 63वां संस्करण जीता था, और पिछले मुकाबले जो पिछले साल का जो मुकाबला हुआ था 64वां संस्करण, उसके विजेता रहे थे बेटकुची हाई स्कूल गुवाहाटी। हालांकि वो अब इस टूर्नामेंट में नहीं है, शायद लीग में ही बाहर चली गई है, लेकिन ये दोनों टीमें नहीं, जो कि झारखंड की टीम 2 बार पहले चैंपियन हो चुकी है, लेकिन जहां तक मिजोरम का सवाल है, मैं समझता हूं कि पहली बार यहां पर अपने इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए यहां पर उतरी हुई नजर आ रही है।
1: Well, certainly the junior girls under 17 category that began on 18th August, so 9 days into the tournament, and here we are approaching the final moments before the final clash begins. 36 teams spread across 8 pools. NCC belonged to Pool C and Jharkhand from Pool F, now the 2 last teams standing. A win today for Jharkhand and they will stand alone as the first school team in tournament history to capture a record and making it 4 titles of the junior girls under 17 in the Subroto Cup international football tournament history. Both the teams put together in this tournament so far, 43 goals for Jharkhand, 41 goals for NCC. That is some goal scoring form both teams have shown throughout the tournament. Mind you, 2 undefeated records, only 1 trophy to go for tonight. Sit back football forms, because an absolute classic is about to unfold. When you look at both the records put together, 84 goals combined together, only 2 lethal undefeated defenses. So what this speaks is both the teams have had quite rock solid defenses. The back four, the goalkeeper, the defense that forms the 5 have been steady, have been rock solid, and have ensured that the midfield and the attack is able to push on and score goals. And I think this is exactly the strategy that both the teams going into the final clash will look to adopt.
0: शंतनु, इसके पहले कि फाइनल की शुरुआत हो जाए, मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि ये टीम किस तरह से फाइनल में पहुंची है, वे टू फाइनल किस तरह से लीग मैच में। जहां तक स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल का सवाल है, मिजोरम की टीम का, उन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम को 19-0 से पराजित किया था, हरियाणा की टीम को 6-0 से और उत्तराखंड की टीम को 5-0 से, और गुजरात के खिलाफ 3-3 का उनका ड्रॉ रहा। जबकि क्वार्टर फाइनल में मेघालय की टीम को 6-0 से उन्होंने परास्त किया, और सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ की टीम को 2-1 से उन्होंने हराया। जबकि सैनी पैट्रिक हाई स्कूल गुमला, ये जो टीम है झारखंड की, इन्होंने अपने लीग मैच में दिल्ली को 8-0 से परास्त किया, आईपीएससी की टीम को 11-0 से, और त्रिपुरा की टीम को 3-1 और एपीएस की टीम को 9-0 से उन्होंने परास्त किया। और जहां तक क्वार्टर फाइनल का सवाल है, उन्होंने बिहार को 5-1, और सेमीफाइनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था, सीआईएससीई की टीम को 2-0 से परास्त करके उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो दोनों टीमें, जैसे कि आपने जिक्र किया, बहुत मजबूती के साथ संघर्षपूर्ण मुकाबला खेलते हुए आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये दिन मुझे याद आ रहा है एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी, जिसे फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है, भारत के पहले वायुसेना प्रमुख, और उन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स जैसे कि मैंने कहा जाता है। उनका जन्म 5 मार्च 1911 कोलकाता

0: बंगाल में हुआ, उनकी सोच थी कि अगर फुटबॉल को आगे बढ़ाना है भारत में तो ग्रास रूट लेवल पर इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, और वही सोच के उन्होंने 1958 में सोच रखी और 1960 से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शिक्षा और प्रशिक्षण जहाँ तक उनका सवाल है, कोलकाता में हुआ, इंग्लैंड में उन्होंने रॉयल एयरफोर्स कॉलेज से विमानन प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1932 में जब भारतीय वायुसेना का गठन हुआ तो वह पहले 6 भारतीय कैडेट्स में से एक थे। फिलहाल खेल यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों खिलाड़ी बाएँ हमारे दाहिनी तरफ इस समय स्काई ब्लू ड्रेस में नजर आ रही है झारखंड की टीम, और बाईं तरफ ये जो टीम है ये नजर आ रही है यहाँ पर मिजोरम की स्प्रिंगफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल आइजवाल। तो जो नजर आ रहा है फील्ड वो 5-3-2 इस तरह की रचना, जबकि 4-4-2 इस तरह की रक्षा होगी यहाँ पर झारखंड की टीम।
1: इट बिगिंस राइट हियर राइट नाउ। In yellow is the team from NCC, Aizwal Mizoram, who then put the ball underway right from the center of the park, center circle, and an immediate attack from the right flank player, nicely disguising the defense there, cutting inside the D, superb block, a timely intervention from the defense of Jharkhand, and now Jharkhand able to make strides, a fantastic start to this tournament, midfield dominant play seeming to be the early form. What a through ball this can prove to be. The forward attacking, but fantastic reading of the game by the goalkeeper from NCC, coming out of the line and ensuring that the ball is cleared out for the first throw. Jharkhand in possession now. The head coach of the Jharkhand team, Bina Karketa, now looking seemingly agitated at the beginning minutes that have unfolded here. Again in possession is NCC this time, trying to find the pace of the ball. Some slight drizzle in the early evening of the match, and which is why the grass also seems to be quite slippery, quite sluggish, and both the teams will take some time to get used to the pitch of the ball.
0: बिल्कुल सही संतोष, थोड़ी बूंदाबांदी जो हुई, जो बारिश हुई इसकी वजह से थोड़ी सी फिसलन जरूर मैदान पर होगी, लेकिन फिर भी खेल और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद। वहां पर गोल पोस्ट के अंदर प्रवेश करते हुए पेनाल्टी एरिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर गोल लाइन से बाहर की तरफ। मानना पड़ेगा कि झारखंड की टीम ने आते ही अपना आक्रामकता यहाँ पर दिखाई है, बहुत तेजी के साथ उन्होंने अच्छे पासेस दिए, तो तिरछे पासेस, और यहाँ पर कॉर्नर लेती हुई यहाँ पर झारखंड की टीम, देख रहे हैं कि इस कॉर्नर का कितना फ़ायदा उनकी टीम उठा पाती है, जबकि सारे खिलाड़ी मुस्तैद वहाँ गोल पोस्ट के पास, इंतज़ार पहले गोल का, सारे दर्शकों के साथ उछलती हुई ये गेंद, और देखना है कि गोल पोस्ट में दाग पाते हैं नहीं, और गोल पोस्ट के बाहर पहला खतरा यहां पर टलता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी वहां पर एक कॉर्नर किक फिर से दी गई है वहां पर झारखंड के पक्ष में, और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है ये, इससे जहां पर दिखाया एक ने, और क्या हेडर का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, मौका है वहां पर गोल पोस्ट के बिल्कुल पास करीब, लेकिन निकालते हुए वहां पर तेजी के साथ सिमांग कुई ने उसको पास दिया अपने बाएं प्लैंक की तरफ, और गेंद फिर टच लाइन से बाहर की तरफ जाती हुई। मानना पड़ेगा कि जो तालमेल, समझ बूझ, अंडरस्टैंडिंग जो खिलाड़ियों के बीच में नजर आई शुरू से ही झारखंड की टीम में, वो एकाग्रता, वो चपलता नजर आ रही है।
1: द फर्स्ट मिनट्स ऑफ द गेम श्योरली शो महेश व्हाई झारखंड द सेंट पैट्रिक स्कूल इज द undisputed royalty of this competition, the three-time champions now having the possession of the ball higher up in the right side flank. Another throw goes out and Jharkhand in possession again. And mind you, this is not the first meeting of both these teams in the Subrata Cup International Football Tournament. Back in 2023 semi-finals, these two identical programs met. Jharkhand then put on a clinical performance, and as we see the ball rolling into the D, nicely put out by the white player, jersey number 7 in possession now. A wonderful cross into the box, but finds the NCC defense, and the NCC defender is able to put the ball out safely for another Jharkhand throw. Jharkhand getting a lot of throw-ins now, will be important to see, can they capitalize from this aggressive opening. The defense line of Jharkhand, as you would imagine, is pushing higher up in the field, making the midfielders go higher up, and the attack line putting on the pressure. This seems to be a strategic move by the head coach, seemingly urging the players to press high up the field and put the pressure on the NCC defense lines. An opportunity here goes begging, a good shot

0: but a good save to go with that. And the NCC goalkeeper is making some good impression in the beginning of the game.
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बचाव किया वहां पर भी लाल रुआत संगी जो कि गोलकीपर हैं और निश्चित रूप से ये खतरा उन्होंने टाला अपनी टीम के लिए लेकिन मानना पड़ेगा जिस तरह से यहां पर अच्छे पासेस ड्रिबल किए जा रहे हैं यहां पर झारखंड की टीम के जरिए वो दिखा रहा है कि कितना आक्रामकता और कितने अच्छे सटीक उन्होंने अब तैयारी की इस फाइनल मुकाबले की और निश्चित रूप से कोशिश उनकी यही होगी कि तीसरी बार इस मुकाबले को जीता जाए लेकिन दूसरी तरफ मिजोरम की टीम दस से मस्त होने का नाम नहीं ले रही अभी हालांकि बहुत प्रारंभिक क्षण है अभी तिरछा पास वहाँ पर किसी तरह से वहाँ पर छीना खिलाड़ी ने नौ नंबर के खिलाड़ी को पास देती हुई आयरन रैंक टीम और उसके बाद में यहाँ पर फिर झारखंड के पक्ष में वहाँ पर खिलाड़ी सुनेला टुड्डू पास दिया उन्होंने सात नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास सुनेला टुड्डू निश्चित रूप से थोड़ा सा चीप करता हुआ स्ट्रोक ये शॉट उनका लेकिन गोल पोस्ट के अंदर बिल्कुल दबाव बरकरार रखा है आक्रामक जो खिलाड़ी हैं इसके झारखंड के टीम के वो तो पूरी तरह से दबाव में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं मिजोरम के टीम के ऊपर हालांकि वहां पर जो रेफरी उन्होंने गेंद टच लाइन से बाहर की तरफ गया है जो इसके रेफरी हैं सर्जेंट एस शरत लामलोंग और असिस्टेंट रेफरी इसके कॉर्पोरल स्टीफन और दूसरे रेफरी हैं उत्पल बोरा ये पहरेदारी कर रहे हैं इस मुकाबले की फिलहाल पास यहाँ पर मिड फील्ड पर चलता हुआ मिड सर्कल पर खेल चलता हुआ काफ़ी तेजी के साथ वहाँ पर जा रही है आयरिन क्या आयरिन ले पाएगी आगे की तरफ लेकिन फिर वहाँ पर पोजीशन छीनती हुई आगे बढ़ने की कोशिश में वहाँ पर की सिपा और फिर सेंटर लाइन की तरफ खेल आगे बढ़ता हुआ लेकिन मानना पड़ेगा कि बहुत जल्दी वहाँ पर गेंद ने पोजीशन अपनी तरफ से प्राप्त करते हुए झारखंड की टीम दबदबा बरकरार रख रही है हालांकि इस बार जो खेल चल रहा है वो सेकेंड हाफ जो झारखंड का है उसमें मुकाबला चल रहा है लेकिन दोनों टीमों का अभी भी मुकाबला शुरू हुआ है संतनु तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा खिलाड़ियों का शरीर उनका ब्लड प्रेशर गर्म होगा और उसके बाद खेल और गर्म जोशी के साथ यहाँ पर खेलता हुआ नजर आएगा
0: Yes, absolutely, Mahesh. As you can see in the last couple of minutes, NCC now able to put some passes together. They are able to be on the same wavelength as the two defenders in the central of the park are able to do good communication, put the ball out in the right flank, onto the left flank, and switch the term of the play. However, the captain, Veena Kumari from Jharkhand, who has been the dominating force throughout the tournament, is able to dictate play. Another chance, a tackle inside the D. Fantastic sliding tackle. The referee says plays on. Fair tackle in the right spirit of the game. But the ball goes out for another throw. And Jharkhand again pressing high on the front foot. NCC now have to certainly get their game together to put some passes together and make sure that this is an equally fought tie. Jharkhand dominating the ball at the moment, putting pressure on the ball in the midfield and making sure that NCC players are not able to put in any passes together. Has been a slightly start and stop game, not able to get in the feel or the control of the game so far, but having known Jharkhand and having followed the history of the football club is not something that they will heavily rely on. A chance goes begging now for NCC. Was a good attempt on the right flank. A pass was made in behind for the runner. A fantastic run on the head of the defender. Eventually goes out for an NCC corner. And Mahesh, this is now the first throw-in that NCC has in the attacking territory. In the final third, the ball comes in into the D. But again, as you see, NCC slightly following a cautious approach, making sure that enough bodies are there to defend any sort of counter-attack from Jharkhand. Jharkhand have been lethal on the counter-attack. 18 goals so far in the tournament on counter-attack. Another one brimming here from player number 10. Goes in the center of the park. Slightly juggled into the feet of player number 7, who's been an enormous implementation of the front line. The St. Patrick's High School from Gumla in Jharkhand, before making their current 2026 run, has built an incredible resume at the Subroto Cup International Football Tournament. The 2022 breakthrough season for them, where they first won their under juniors 16 and 17 championship. In 2023 was the title defense and 2024 was the triple crown. Can they win tonight? And if they win tonight, they will be the first team to win this

0: division of the under junior girls 17 for four times running.
1: बिल्कुल संतनु, देखना यही होगा कि क्या आज यहाँ पर जीत का सहरा अपने स्तर ये लड़कियाँ बधा पाती है. अंडर 17 का मुकाबला जो चल रहा है फाइनल मिजोरम और झारखंड के बीच, यहाँ पर निश्चित रूप से संघर्ष जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, सवर्णी कुमार, उषा कुमारी, बीना कुमारी जो कि कप्तान है, उनके बीच में अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आया. और दूसरी तरफ से लाल थीम हुई जो कि जिन्होंने काफ़ी प्रभावशाली खेल का प्रदर्शन किया था सेमीफाइनल में, उन्होंने दो गोल दागकर, पहला गोल दागकर बहुत बड़ा दबाव डाला था 36 घंटे के ऊपर, और उसके बाद में लाल रुजामी ने निर्णायक गोल करके मुकाबला जीता था. तो निश्चित रूप से यहाँ पर मिजोरम की टीम भी उतना हौसला रखती है, उतना तेवर रखती है कि वो भी इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए विवश करे झारखंड की टीम को मुकाबला जीतने के लिए वंचित करने से. निश्चित रूप से संघर्ष की बिल्कुल कोशिश, शिफ्ट हेडर पास देते हुए इस समय खेल चल रहा है मिजोरम के हाथ में.

तेवर रखती है कि वो भी इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए विवश करें झारखंड की टीम को मुकाबला जीतने के लिए वंचित करने से। निश्चित रूप से संघर्ष की बिल्कुल कोशिश। शिफ्ट हेडर पास देते हुए इस समय खेल चल रहा है मिजोरम के हाथ में। एक बार पास मिला वहाँ पर बीना कुमारी के पास। कप्तान छोटे कद के हैं लेकिन फुर्तीली चौकन्नी और तिरछा पास देकर उन्होंने इस बार फिर गेंद को निकाला अपने पास। फिर बीना कुमारी जा रही है पोजीशन लेने के लिए जबकि वहाँ गेंद बाई छोर पर विकेट के रूप में पहुंची है खिलाड़ी। और जब तक कि वो गेंद को ठीक में मारे वहाँ पर बचाव के लिए खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद लेकिन वहाँ जो पास आया उसे लेने के लिए तैयार नहीं थी नेम किचोई होकिप। और वो मुकाबला जो ऐसा लगा जो एक मौका बन सकता था वो मौका।